आज सामने जे कोई हैगा सुरमा, आज सामने जे कोई हैगा सुरमा, उग सेच बोलिया चार वारी कुट खा के गोरे आने योदे नू तो खेनाल मारिया। आज सामने जे कोई हैगा सुरमा।

सामने जे को हैगा सूरमा उगसे च बोलिया चार वारी कुट खा के गोरे आ रहे हो दे नु धोखे नाल मारिया जालम सरकार नु सी थप्पड़ मारिया उन्हें पुठे हाथ दा जालम सरकार नु सी थप्पड़ मारिया उन्हें पुठे हाथ दा जालम सरकार नु सी थप्पड़ मारिया उन्हें पुठे हाथ दा।